0: ये NHK World जापान की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज पर सुनी जा सकती हैं।
1: जी सामिन, आज की रिपोर्ट में हमने सिनफी तशद्दुद के हकायक सुने। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट?
0: हाँ सामिन, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा।
1: और आपने हमें अपनी आरा कैसे भिजवानी है इसका तरीकाकार आज बताते चलें।
0: जी, एक बार फिर दीवान खाना में अपना पैगाम, राय या खत भेजना चाहते हैं तो अपने वेब ब्राउजर में nhk.jp/urdu टाइप करें। खजा साहिबा, आपने गुज़श्ता हफ्ते इस तमाम तरीक़ाकार पर अमल करके एक ईमेल रवाना की थी, तो आज सामीन को बिल्कुल सादा अल्फाज में इसका दोबारा तरीका बताइए ना।
2: ज़रूर, क्यों नहीं,
1: सादगी से।
2: जी सादगी से ही बताऊंगी। मैंने सबसे पहले होम पेज nhk.jp/urdu खोला और शोज़ ऑन डिमांड में जाकर दीवान खाना के मेज़बानों की तस्वीर ढूँढी, यानी अपनी
1: ऐनक लगा के वैसे
2: ऐनक के साथ असीमा जी। और दीवान खाना के थंबनेल यानी तस्वीर के छोटे वर्जन की बाएं जानब बाकी तफसील के अलावा एक जुमला था, पैगामात यहाँ भेजे। मैंने फटाफट उस पर क्लिक कर दिया।
1: इस ऑप्शन पर फटाफट क्लिक करने से आप हम आपकी आरा के मुंतजिर हैं वाले सफ़े पे पहुंच गई होंगी जरूर।
2: हाँ जी, उस पेज पर तस्वीर के नीचे दी गई हिदायत पढ़ने के बाद लिंक था फॉर्म की तरफ पढ़ें। उस लिंक पर क्लिक किया।
1: जी सामिन, लिंक था फॉर्म की तरफ बढ़ें।
2: बिल्कुल यही था। उस क्लिक के बाद पहली रसाई पर रजामंदी की तस्दीक वाला पेज खुला, जिसको पढ़कर कबूल है के ऑप्शन पर क्लिक किया और फिर आगे बढ़ने के लिए तीर के निशान पर क्लिक किया।
0: मैं यहाँ वजाहत करता चलूं कि इसके बाद हो सकता है कि नोट वाला पेज खुले, ऐसी सूरत में मंदरजा बाला से मुत्तफिक को मुंतखब करके बाएं जानिब वाले तीर के निशान पर क्लिक करें। अब एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपसे ये मालूमात मांगी जाएंगी, आपका उर्फी नाम यानी आपका निक नेम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका पैगाम यानी मैसेज।
2: बिल्कुल, ये सब कुछ था। इन मालूमात को पुर करके मैंने पैगाम भेजा तो एक और सवाल आ गया।
1: वैसे खदीजा, उर्फी नाम लिखा क्या था? निक नेम?
2: नहीं बताऊंगी।
1: अच्छा, सवाल के बारे में क्या बता रहे थे खलील सर?
0: सवाल ये होगा
1: कि क्या आप कोई वीडियो या तस्वीर भी साथ भेजना चाहते हैं या सिर्फ तहरीरी पैगाम काफी है। खदीजा, ये बताएं कि सिर्फ मैसेज भेजना हो तो क्या करेंगे?
2: तब नहीं वाला ऑप्शन मुंतखब करें। तीर के निशान पर क्लिक करने से आपका पैगाम हम तक फटाफट पहुंच जाएगा।
0: यानी कि मैसेज आपने पहले ही लिख दिया होगा तो वो पहुंच जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आपने ढेर सारे मैसेजेस भेजने हैं सामिन, कि आपको आज की रिपोर्ट कैसे लगी? बड़ी मेहनत की है।
0: हम इंतजार करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे होम पेज का एड्रेस एक बार फिर सुन लीजिए, nhk.jp/urdu। इसके साथ ही अपने मेजबानों को अब इजाजत दीजिए।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का उनके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। सबसे पहले स्वीकार करें वायला कवानो का कोनिचिवा नमस्कार।
1: आवाज की दुनिया के सभी साथियों को रंजना सिंह का भी प्यार भरा नमस्कार कोनिचिवा। लेकर हाजिर है आपके पत्रों के जवाब, तो कहीं न जाएं, बने रहे हमारे साथ।
0: रंजना जी, आजकल आपने गौर किया होगा कि हर जगह हरियाली छाई हुई है, फूलों की बहार है।
1: हाँ, खासकर गुलाब ट्यूलिप के फूल काफी देखने को मिल रहे हैं, और वो भी तरह तरह के रंगों में।
0: हाँ,
1: मैं भी सोच रही हूँ कि अपने घर की बालकनी में लगा कर देखूँ, कुछ नया करना तो बनता है ना।
0: हाँ भाई, मौसम इतना खुशगवार है कि मन प्रसन्न है, ऐसे में नई नई चीजों में हाथ आजमाना अच्छा रहेगा। मैं भी सोच रही हूँ कि अपने बाल कटवाऊं, अपना कुछ स्टाइल बदलूं।
1: अरे ये भी अच्छा विचार है। वैसे बाल कटवाते समय जमीन पर गिरे बालों को देखकर कभी कभी दुख होता है कि कितने प्यार से बड़े किए थे और अब कूड़े में जा रहे हैं।
0: वो तो है, और भारत में होते तो देखिए बालों से कमाई भी हो सकती थी।
1: अरे हाँ, इससे जुड़ा एक वीडियो मैंने हमारी वेबसाइट पर देखा कि कैसे लोग अपने बाल बेचकर कमाई कर रहे हैं। विग आदि के लिए भारत से बड़ी मात्रा में कैश निर्यात होते हैं, और इन काले बालों को ब्लैक डायमंड तक कहा जा रहा है।
0: बताइए, ये भी एक कारोबार है। लेकिन देखिए, मेरे बाल तो इतने हैं भी नहीं कि इन्हें बेच सकूं, उल्टा मुझे खुद बालों की जरूरत है।
1: अगर श्रोताओं को इस विषय में रुचि हो तो जरूर देखें हमारी यह वीडियो क्लिप। बहरहाल समय निकलता जा रहा है, तो लेते हैं श्रोताओं के पत्र।
0: जी हाँ, और सबसे पहले है सुरेश अग्रवाल जी का पत्र। लिखते हैं, दिनांक 3 मई के चरी के देश से के अंतर्गत अभिनेता पंकज त्रिपाठी से की गई भेंटवार्ता का तीसरा और अंतिम भाग भी सुनने का अवसर मिला। पूरी बातचीत का सार यही रहा कि पंकज जी एक गहरे यथार्थ से जुड़े संवेदनशील और सरल व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं। सिनेमा और OTT प्लेटफॉर्म के संबंध में उनके संतुलित और विचारोत्तेजक दृष्टिकोण विशेष रूप से प्रभावित करने वाले रहे। ऐसा भी प्रतीत हुआ कि व्यक्तिगत स्तर पर OTT उन्हें उतना आकर्षित नहीं करता जितना पारंपरिक सिनेमा। समग्र रूप से ये साक्षात्कार अत्यंत रोचक, सारगर्भित और सुनने योग्य रहा। और लिखते हैं कि आज के अंक में फेसबुक से श्रोता मित्र उमेश शर्मा की टिप्पणी भी सुनवाई गई। उमेश जी मेरे समकालीन श्रोताओं में से एक रहे हैं, और मुझे भली भांति स्मरण है कि एक समय कैलाश नगर नारनौल हरियाणा के उमेश शर्मा रेडियो जगत में विशेष पहचान बनाए हुए थे। उनका उल्लेख सुनकर ऐसा लगा मानो कोई खोई हुई अमूल्य धरोहर पुनः प्राप्त हो गई हो।
1: सुरेश जी, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंट वार्ता का तीसरा अंक भी आपने सुना, इसके लिए आभार। पंकज जी की बातें सच में दिलचस्प रही, और हमें खुशी है कि उनके साथ विशेष बातचीत आप सब तक पहुंच सके। उमेश शर्मा जी वही हरियाणा वाले हैं या फिर कोई और, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उमेश जी जरूर अपने बारे में बताएंगे।
0: और बेहतर होगा अगर वे इस कार्यक्रम के लिए ईमेल से अपना परिचय लिखकर हमें भेजें। तो उमेश जी, इंतजार है आपके पत्र का।
1: जी, अब ये अगला पत्र है हरि बाला कृष्ण जी का। लिखते हैं, पिछले कुछ साल से मैं भारतीय समय अनुसार रात 9 से 9:20 तक आपके हिंदी प्रसारण का दैनिक श्रोता हूँ। मैं विशेष रूप से शनिवार का इंतजार करता हूँ जब साहित्य सरिता का प्रसारण होता है। अब तक मैंने सभी कहानियाँ इतनी बार सुन ली है कि याद हो गई हैं। मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है मकड़ी का तार और पत्थरों का कोया।
0: हरी जी, हमारा प्रसारण सुनने के लिए धन्यवाद। लगता है कि आपको साहित्य में रुचि है। आगे भी सुनते रहें और हमें लिखते रहें। और भी तरह तरह की सामग्री हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, तो उनका भी आप आनंद लें।
1: जी हाँ, और हमें अपनी राय से अवगत भी जरूर कराएं।
0: बिल्कुल। और अब देखिए, अगला पत्र है रामकुमार नीरज जी का, आरा बिहार से। लिखते हैं, हिंदी सेवा की वेबसाइट पर ये रिपोर्ट कि शोधकर्ताओं ने पूर्वोत्तर जापान के तट पर आई सुनामी की गति का किया आकलन, केवल एक प्राकृतिक घटना की सूचना नहीं देती, बल्कि हमें प्रकृति की अपार शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता का गहरा एहसास कराती है। पूर्वोत्तर जापान में आए शक्तिशाली भूकंप के बाद मात्र 20 मिनट में सुनामी की लहरों का तट तक पहुंचना, ये दर्शाता है कि आपदाएं कितनी तेजी से इंसानी जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ ही पलों में सामान्य चल रहा जीवन भय, अनिश्चितता और संघर्ष में बदल सकता है। इस समाचार की सबसे बड़ी गंभीरता यही है कि जब धरती कांपती है और समुद्र उठ खड़ा होता है, तब इंसान की सारी तकनीक, संपत्ति और योजनाएं बहुत छोटी दिखाई देने लगती हैं। प्राकृतिक आपदाएं मानवता को भीतर तक चोट पहुंचाती हैं। आपदा के बाद लोग लंबे समय तक डर, मानसिक तनाव और असुरक्षा की भावना के साथ जीते हैं।
1: ये बात तो है, आपदाएं न केवल आर्थिक नुकसान करती हैं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी चोट पहुंचाती हैं।
0: जी, और रामकुमार जी आगे लिखते हैं कि इस रिपोर्ट में शोध दल द्वारा किया गया सिमुलेशन ये भी बताता है कि विज्ञान और शोध मानवता की रक्षा के लिए कितने जरूरी हैं। यदि समय रहते चेतावनी मिले, लोग सुरक्षित स्थानों पर तुरंत चले जाएं और प्रशासन सतर्क रहे, तो अनेक जीवन बचाए जा सकते हैं। ये रिपोर्ट हमें सिखाती है कि प्रकृति के सामने घमंड नहीं, बल्कि विनम्रता, तैयारी और एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता ही सबसे बड़ी ताकत है। अंततः ऐसी आपदाएं हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत की असली पहचान संकट के समय सामने आती है, जब लोग एक दूसरे का हाथ थामते हैं, राहत पहुंचाते हैं और टूटे हुए

0: सबसे बड़ी सीख मिलती है और इसका प्रसार पूरी दुनिया में होना चाहिए।
1: अब देखिए, भुवनेश्वर ओडिशा से चिन्मय होता जी का पत्र है। लिखते हैं, मैं आज सुबह ही होकाइदो की 14 दिन की यात्रा से लौटा हूँ।
0: अच्छा,
1: यह जापान की सुंदर भूमि और अद्भुत लोगों की मेरी तीसरी यात्रा थी। 2012 में मैंने होनशु द्वीप का भ्रमण किया था। 2017 में मैं ओकिनावा और होनशु के कुछ स्थलों पर गया था। मेरी यह नवीनतम यात्रा पूर्णतः होकाइदो के लिए आरक्षित थी और मैं पहाड़ों, प्राकृतिक दृश्यों और शहरी परिदृश्यों से मंत्रमुग्ध हो गया। मेरे पास जापान में 4 चीजें देखने की सूची थी, माउंट फूजी को देखना, चेरी ब्लॉसम का आनंद लेना, और मैंने इन दोनों को पूरा कर लिया है। मेरे दो और सपने हैं, सुमो का खेल देखना और काबुकी थिएटर का प्रदर्शन देखना।
0: अच्छा,
1: मैं 1980 के दशक से NHK का एक उत्साही श्रोता रहा हूँ और मैंने आपके स्टेशन को कई रेडियो श्रोता रिपोर्ट भेजे हैं और बदले में सुंदर तस्वीर वाले पोस्ट कार्ड प्राप्त किए हैं। मेरी यात्रा ने मुझे एक बार फिर रेडियो जापान की ओर लौटने और आपको लिखने के लिए प्रेरित किया है।
0: अरे वाह चिन्मय जी, कितनी बार आप जापान आ चुके हैं, और मुझे लगता है कि रंजना जी हम लोगों से भी बहुत ज्यादा घूम और देख चुके हैं।
1: हाँ, सही कहा। आगे लिखते हैं, मैंने पंकज त्रिपाठी के साथ साक्षात्कार का बहुत आनंद लिया और उन्होंने काबुकी थिएटर की मेरी सुप्त इच्छा को और तीव्र कर दिया। वास्तव में वह एक महान अभिनेता है जो अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए लाखों लोगों के प्रिय है। जापान यात्रा के दौरान जब भूकंप आया और जिस क्षेत्र में मैं था उसे सुनामी ने खतरे में डाल दिया, तो मैं नवीनतम रिपोर्ट एकत्र करने के लिए आपके प्रसारण की ओर लौटा। NHK के साथ मैंने 56 वर्ष की उम्र में वैसा ही आश्वस्त महसूस किया जैसा मैंने एक किशोर के रूप में महसूस किया था। लंबे समय से चले आ रहे बंधन को जीवित रखने के लिए रेडियो जापान का धन्यवाद। क्या मुझे जापान के बारे में अपनी 5वीं इच्छा भी जोड़नी चाहिए, एक बार आपके स्टूडियो में आना और आप महान लोगों से मिलना?
0: अरे चिन्मय जी, आपने तो पूरी तरह जापान का अनुभव किया और यहाँ तक कि भूकंप और सुनामी का भी। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि जापान में भूकंप या सुनामी आने पर क्या माहौल रहता है। इसमें हमारी वेबसाइट आपके काम आ सकी, इसके लिए धन्यवाद।
1: अगली बार जब आप आए तो हमें पहले से इतला जरूर करें, क्योंकि हम भी जापान की धरती पर अपने किसी श्रोता से मुलाकात करके धन्य होना चाहते हैं। तो आप 5वीं इच्छा भी जरूर जोड़े, बल्कि यूं कहिए कि आपसे मिलने की इच्छा हमारी भी उतनी ही प्रबल है।
0: बिल्कुल। और देखिए, अब वक्त हो रहा है हमारी फ्रीक्वेंसी की जानकारी देने का, तो नोट कर लीजिए फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: स्वागत है एक बार फिर से चेरी के देश से कार्यक्रम में। वायला जी, पंकज त्रिपाठी जी के साथ भेंट वार्ता काफी पसंद की गई ना?
0: हाँ, वो तो है।
1: एक श्रोता अंजुला अवस्थी विश्वास ने उनकी भेंट वार्ता पर ऑडियो संदेश भेजा है, क्यों ना वो सुन लिया जाए।
3: रंगमंच के दमदार लेकिन सरल और सादे अदाकार पंकज त्रिपाठी जी का संवाद सुनकर मन प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने सही कहा कि जीवंत अदाकारी थिएटर जिसमें किसी प्रकार की सुधार या संपादन या संशोधन या व्यवस्था करने की संभावना नहीं होती, दर्शकों के मन में कलाकार के लिए एक अविस्मृत छाप छोड़ जाता है। उनका, पंकज जी का विभिन्न शैलियों से परिचय व उसकी जानकारी काफ़ी रुचिकर लगी। उनकी सरलता व अभिनय के लाखों लोग प्रशंसक हैं। शांग्रीला जी व उनकी टीम के सभी सदस्यों को, पंकज त्रिपाठी जी को हमें सुनने देने का मौका देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
0: भाई वाह, क्या बात कही है। आगे भी हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए और अपनी टिप्पणी भेजते रहिए। अब अगला पत्र है प्रदीप बसाक जी का, पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से। लिखते हैं, चीन में

0: आयोजित एक अनोखी हाफ मैराथन की खबर फेसबुक पर देखकर मन में आश्चर्य, जिज्ञासा और थोड़ी सी चिंता, तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। 19 अप्रैल को बीजिंग के उपनगर में आयोजित इस प्रतियोगिता में एक इंसानी रोबोट ने इंसानों का बनाया विश्व रिकॉर्ड लगभग 7 मिनट के अंतर से तोड़ दिया। ये केवल एक खेल उपलब्धि नहीं बल्कि तकनीक और मानव सभ्यता के रिश्ते में एक नए अध्याय का संकेत है। अब तक हम रोबोट को केवल कारखानों या प्रयोगशालाओं तक सीमित समझते थे, लेकिन उनका इस तरह खेल के मैदान में उतरकर इंसानों को पीछे छोड़ देना सचमुच कल्पना से परे लगता है। ये उपलब्धि बताती है कि चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और कितना गंभीर निवेश किया है। लेकिन इस उपलब्धि के साथ साथ मन में कुछ सवाल भी उठते हैं। क्या भविष्य में खेलों की दुनिया में भी मशीनें इंसानों का स्थान ले लेंगी? खेल तो केवल हार जीत का नाम नहीं बल्कि उसमें मानवीय संघर्ष, भावनाएं, थकान और जज्बा भी शामिल होता है। अगर रोबोट इन सबको पीछे छोड़ देंगे तो क्या खेलों का असली सौंदर्य कहीं खो नहीं जाएगा? फिर भी इस घटना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि आने वाले समय में रोबोट न केवल उद्योगों में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जगह बना सकते हैं। यदि इन तकनीकों का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये मानव जीवन को और अधिक सरल और सुरक्षित बना सकते हैं। एक श्रोता के तौर पर मेरी ये भावना है कि हमें इस प्रगति को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही इसकी सीमाओं और प्रभावों पर भी गंभीरता से विचार करना आवश्यक है।
1: प्रदीप जी, वाकई इस खबर ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मुझे लगता है कि चीन रोबोटिक्स में इतना आगे निकल चुका है कि उस तक पहुंचने में अभी बाकी देशों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। शतरंज जैसे खेलों में कभी कभी खिलाड़ी कंप्यूटर से मुकाबला करता है, यह तो सुना था, लेकिन भागने दौड़ने में रोबोट भी उतर आएंगे, ये शायद सोचा नहीं था।
0: हाँ, और ये बात तो है, ऐसे रोबोट भविष्य में किस प्रकार प्रयोग किए जाएंगे पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि जीवन शैली को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। इस प्रौद्योगिकी का सदुपयोग किया जाए और किसी गलत काम पर ना लगाया जाए, यही कामना है। हाफ मैराथन दौड़ने वाले इस रोबोट का वीडियो हमारी वेबसाइट पर है, आप जरूर देखिएगा।
1: अब ये पत्र ले रही हूँ जो आया है राजस्थान में गांव केलावा कला से रामलाल बिश्नोई जी का। लिखते हैं, 19 अप्रैल का कार्यक्रम हमेशा की तरह से थोड़ा अलग था। इसमें अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी जी से मुलाकात रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी। विशेष रूप से मेरा पत्र शामिल हुआ इसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिश्नोई जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए आभार। सुना है अभी राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, तो लू से पूरा बचाव करें और अपना ख्याल रखें।
1: मई का महीना तो पूरे भारतवर्ष में बेहद गर्म रहता है, सभी मित्र अपना ख्याल रखें।
0: जी, और अब देखिए, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से मोहम्मद सादिक आजमी जी लिखते हैं, पूर्व की भांति काफी गर्मजोशी से चेरी के देश से का इंतजार कर रहा था। परिश्रम का परिणाम पाकर मन प्रफुल्लित है, ये मिश्रण दुगनी खुशी प्रदान करता है। श्रोताओं के विचार और अहम शख्सियत से मुलाकात, यानी आम के आम गुटलियों के दाम। पंकज जी के व्यक्तित्व की सभी श्रोता मित्रों ने खुले मन से प्रशंसा की। आज की बातचीत से कुछ प्रमुख पहलुओं के परतें उभर कर सामने आईं। अभिनय जगत में कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी कैसे बनती है और निपुणता की प्राप्ति किस प्रकार होती है, पंकज जी ने सहजता से समझाया। मुझे लगता है कि इस भेंटवार्ता से अभिनय जगत में मुकाम हासिल करने वाले सभी युवा वर्गों को प्रेरणा मिली होगी। हमें भी उनके दैनिक जीवन एवं भविष्य की योजनाओं को जानने का अवसर मिला। रामकुमार नीरज जी की प्रतिक्रिया सारगर्भित होती है, ऐसे श्रोताओं से ही आपका मंच रौनक है। भाई चिन्मय महतो जी की उपलब्धि पर अनेकानेक बधाइयां एवं शुभकामनाएं।
1: सादिक जी, आपने कार्यक्रम को पसंद किया इसके लिए आभार। पंकज जी के साथ बातचीत में काफी बातें निकल कर आईं, न केवल फिल्म जगत के बारे में बल्कि ऐसा फलसफा भी जो आम जीवन में हर कोई अपना सकता है।
0: सही कहा। अच्छा, फेसबुक पर राजीव धीमन जी ने आओ सीखे जापानी भाषा के लिए एक सुझाव दिया है कि वेबसाइट से ज्यादा यूट्यूब आसान है, आप कोई यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते? यूट्यूब चैनल पर वीडियो सीरीज डालें तो बहुत लोग सीख पाएंगे।
1: विचार तो अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। आइए, अब कुछ मनोरंजन हो जाए गीत संगीत के द्वारा, तो सुनते हैं गीत हारे तारा ई ने, यानी अच्छा हो अगर मौसम साफ हो, धूप खिली हो। गाया है ड्रीम्स कम ट्रू ग्रुप ने।

0: दोस्तों अब समय हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, फिर होगी मुलाकात। तब तक अनुमति दे वायला कवानों को
1: और रंजना सिंह को
0: सायोनारा, नमस्कार।